0: वाले हो, उन महंगे परफ्यूम आते $400-500 लॉन दी बिल्कुल लोड नहीं। रॉयल परफ्यूम्स दी हो चुकी है ग्रैंड ओपनिंग। स्विट्जरलैंड तो इंपोर्ट कीते ऑयल्स नाल तैयार डियोर ते शनैल वर्गी सेम फ्रेग्रेंस जो चले 8 घंटिया तो भी वध। हर परफ्यूम सिर्फ $50 विच अते रेडियो उड़ान दे स्रोतिया लई खास धमाका। बाय टू गेट वन फ्री यानी $100 चे 3 परफ्यूम ते नाल एक तोहफा रेडियो उड़ान प्रभ संधु दा रेफरेंस देन ते। अपने आप नू फुल्लां दी तरह महकाओ। आज ही आओ Unit 9, 1 Regan Road ब्रैम्पटन सिख संगत गुरु घर दे नेड़े जा ऑर्डर करो www.royalperfumes.co ते कॉल करो 4373150701।
1: The 2026 Brampton municipal election is on Monday, October 26th. If you can't vote on voting day, you can vote early during advance voting. Advance voting will take place on October 9, 10, 11, 16, and 17. Voting hours are weekdays from noon to 8 p.m. and weekends from 10 a.m. to 5 p.m. You can vote at any advance voting location in Brampton. Bring your voter notice if you received one and identification showing your name and address to vote. Didn't receive a voter notice? Bring your ID with you to vote and you can update or add your voter information in person. For voting locations, voter information, and a list of candidates, visit brampton.ca/bramptonvotes.

ब्यूटी इंडस्ट्री दी दुनिया विच अपना करियर बनाउन बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही राह जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हन। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छू मंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cash and carry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लई तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइन इन, टेक आउट, केटरिंग, लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton।

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम कर दे कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करोनी है स्पेशलाइज कर दे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1498-1498 रॉयल ऑटो सेंटर सेंट्रल मिसिसागा दे रहण वाले हो ए मौका ना गवाओ वैली मोर होम्स वालों डेरी लेन टाउन्स जल्द ही डेरी रोड वेस्ट अते हरंटेरियो ते आ रहे ने कंटेम्पररी टाउन होम हाई $700,000 तो शुरू हो रहे ने सीमित समय ले एचएसटी दे विच खास बचत दा फायदा लो हाईवे 401 407 अते 410 गो ट्रांजिट शॉपिंग अते पियर्सन एयरपोर्ट तो सिर्फ कुछ मिनटां दी दूरी ते सब तो पहले बायर्स दे विच शामिल होण दा मौका ना गवाओ अज ही रजिस्टर करो ballymorehomes.com BALLYMORE homes.com

0: 7999 8877 sofastudio.ca। थैंक यू जी।
1: ओए इन्नी गौर नाल की लभी जाना स्मार्टफोन चो
2: ओपरावा ट्रक लिए लोन लभन दिया
3: स्मार्ट फाइनेंशियल एंड लोन सर्विसेज ते आओ ट्रक लोन्स मॉर्गेज डेट कंसोलिडेशन दिया सर्विसेज पाओ दलविंदर जज नो कॉल कमाओ 647-504-3297 20 मैरीटाइम ओंटारियो बुलेवर्ड यूनिट 210 ब्रैम्पटन और विजिट www.smartfinancialgroup.com।
4: ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल वार्ड 9 अते 10 लई परोसे योग उम्मीदवार डॉक्टर आजाद गोयत नू अपना कीमती वोट पाओ।
5: डॉक्टर आजाद गोयत जिना मुद्दे लई जनता दा साथ देन के उना च अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी अते पब्लिक कंसल्टेशन प्रॉपर्टी टैक्सेस विच कटौती क्राइम ते एक्सटॉर्शन ते कारवाई वड्डे बिजनेसमैन अते पॉलिटिशियंस दा नेक्सस तोड़ना लोकल डेवलपमेंट नाली वार्ड नंबर 9 ते 10 लई गो स्टेशंस नाल कनेक्टिविटी फुल पुलिस स्टेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रीन स्पेसेस दी मेंटेनेंस शामिल है।
4: इलेक्शन डेट 26 अक्टूबर 2026। एडवांस वोटिंग ऑन 9, 10, 11, 16 and 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट azadgoyat.ca। पेड फॉर एंड ऑथराइज्ड बाय कैंपेन ऑफ डॉक्टर आजाद गोयत।
6: ਓਏ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਤੇ ਆਟੋ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਹਿਲਾਤਾ।
7: ਓ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਕਵਰੇਜ।
6: ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਟ 416-618-2761 416-618-2761।
8: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। टू लोकेशंस टू सर्व यू, 2575 स्टील एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन, 905-790-0560, 6 Marconi Court, Bolton, 905-951-9394। Stephen Furniture की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन से।

0: super sad. Jump are sus, grass, habits, not it, horsey beasts. Bole, sonny hall, sussy car.
1: मैं कह जी काफी टाइम तो आप कर दी रेनोवेशन नहीं करवाई ताही ता कर वधिया प्राइस ते सेल नहीं हुंदा
2: शम्मी पठल होरा नाल करो गल कर दी रेनोवेशन करा के लिस्ट कर देने वधिया रैकेट प्राइस ते सेल करवा के दें देने
1: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट ले याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछानिया नाम मल्टी अवार्ड विनर ब्रोकर शम्मी पठल
2: वधिया रैकेट प्राइस ते कार सेल करवाउन ले कॉल करो 416-917-7763 यानी 416-917-7763

0: मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों वार्ड 9-10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार मैं 2014 तो 2022 तक तुहानू रिप्रेजेंट कीता मेरी एबसेंस विच असीं देखिया टैक्स इंक्रीज हाई क्राइम अते एक अजिही काउंसल जिस दे रेजिडेंस नू अनदेखिया कीता जदों मैं तुहानू रिप्रेजेंट कीता मैं टैक्स घट रखे बुजुर्गां ने बस सर्विस मुफ्त की सैटेलाइट पुलिस स्टेशन लिआंदा अते हजारां नौकरियां लिआंदियां सब तो इंपोर्टेंट मैं फजूल खर्च विरुद्ध आवाज उठाई अते तुहाडे कॉल्स अटेंड कीतियां हुण मैनूं करप्शन नूं रोकण लई तुहाडी मदद ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਰਖੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ
1: ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਪੇਡ ਫੋਰ ਬਾਈ ਦ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: भाई ये ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां।
3: ओए इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखू नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
4: जी हां, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो। अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन। कॉल विल सेखो 416-819-6000.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केथरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
4: यार इना इंश्योरेंस ने ते तुहा कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा।
5: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनिया बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने।
6: क्रिटिकल मॉर्गेज, RESP, RRSP, विजिटर इंश्योरेंस, सुपर वीजा, स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स। जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे।
5: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100
6: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन।
7: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530. Punjabi Versa!

0: AM 530.
1: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
2: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
1: इंडिया दी टिकटां चाहिदियां सी।
2: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटां लै लो। इंडिया किथे जाना?
1: चार टिकटां दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जाणगीयां?
2: मिल जाणगीयां, बिल्कुल मिल जाणगीयां। दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो तां साडी स्पेशलिटी है। बस दसो की टिकटां कदों दी चाहिदियां ने। ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
1: भरोसेमंद सर्विस ते सब तों वधिया रेट्स लई इक्को इक नाम कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग लई अज ही कॉल करो 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80 98
1: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
3: काउंटिंग नहीं, ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने
4: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते, 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828 905-450-2828।

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
1: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
0: The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: चलिया
1: Solution to promote your business. Desh Pradesh Prime Time Radio and TV. Tohade Angsang 24 ghante satto din. Hun tak Desh Pradesh Prime Time Radio hazara hi business di grand opening live on location nal karwa chukya hai. Te karwa rya hai. Impossible is nothing. Tusi bhi apne business vich vadha karan vaste Desh Pradesh Radio da live on location Friday Saturday karwao. For bookings call Tejinder Sidhu at 416-725-2551 416-725-2551.
2: खुशहाल खुशहाली सोहनी लगती है पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार तो कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज कित्थों आएगी इनकम किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ कॉल करो उमरप्रीत चावला नू जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो ते नाल

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
2: इस लॉन्ग वीकेंड ते अपने सिनेमा घर विच देखो ए दिन रोज रोज नहीं आने स्टार कास्टिंग हरभजन मान और अवकाश मान
3: हर बंदे दी अपनी अपनी जिंदगी हुंदी है ते अपनी अपनी मजबूरी बापू जी दे जान तो बाद मैनू भी बहुत गुस्सा सी फिर एक दिन अंदरों एक आवाज आई कि जाना पर सब नहीं खत फिक्र च पई हुई
4: लांडरा रोड दे ना दो प्लाट लै लेने
2: ए दिन रोज रोज नहीं आने वेखो अपने नेड़े सिनेमा घर दे विच ब्रैम्पटन दे विच सिल्वर सिटी ब्रैम्पटन लैंडमार्क सिनेमा पेन सेंटर सेंट कैथरीन ते जैक्सन सन हैमिल्टन दे विच विखाई जा रही है ए दिन रोज रोज नहीं आने स्टार कास्टिंग हरभजन मान अवकाश मान वेखो अपने नेड़े सिनेमा घर दे विच लॉन्ग वीकेंड ते शुक्रवार नू रिलीज हो रही है
5: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
6: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
7: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 6457-3381 ते
5: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381
2: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नू या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नू सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहुंदे हो तां ओह ते क्लिक करो जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नु कलेक्ट करो उत्थे तुसी सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7

सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए एनब्रिज गैस.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।